0: रेडियो हो।
1: आज अपने फेर आवर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह जुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोले मो बजे कुस्तो खत्म की बने दिल दार दोगर माते रागो तो मले ये ला ओ पोस्टिंग मेरे बुढ़ी बुढ़ी बंदर इशारे ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुतलो फ्लाइंग आफ्टर सी यू अंग्रेजी बुझ्दैन तलाई देखेर सातो पुतलो उड्छ भन्या क्या।